0: cheating and Professor Dhula asking him to step out of the class. Bisahil's family is demanding the immediate arrest of Professor Dhula, alleging caste-based harassment. Sahil's father has also accused the institution of destroying crucial evidence in the case. Meanwhile, politics has also broken out on the caste angle, with Congress Member Parliament K.C. Venugopal alleging that the government withheld caste-wise data on student suicides at IITs.
1: जिसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है, ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशियार तो हुशियार विद्यार्थी होता. हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए. हाँ, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे और वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती.
2: मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए. दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के. यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर. आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है. लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है. हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर. वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता.
3: जो भी किया, लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया. कॉपी करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट सुसाइड करना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग. तो उसके लिए दुख तो है, सब बच्चों के अंदर सिंपैथी है साहिल की, होनी भी चाहिए. पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं, वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं. पर फिर जो केस लगाया गया है डुल्ला सर के ऊपर, वो कम्प्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से. कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन IIT बॉम्बे में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक. मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ. मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, इवेंचुअली मेरे को पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट. ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का. हमारे
4: मेनली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वाज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था. सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड. यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको मार्क्स भी, अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं और रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है.
5: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल अग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट. स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड. बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन, व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल.
0: All right, recent breaking news coming in this morning. Let's take you through it. LSR has now shifted classes online after minor's rape. That's right, after 17-year-old was allegedly raped in Asa Kunj Park, LSR, the Lady Shri Ram College, has now cancelled regular classes and has issued a statement saying safety of students top priority. So we're seeing a reaction coming in there from the college that has now in fact shifted classes online. My colleague Ishika is with us on the broadcast early this morning to bring us the updates. Ishika, if you understand this correctly, then LSR has shifted the classes to an online mode. Walk us through the details. What exactly has prompted this move?
6: Well, as you rightly mentioned, Reet, now in fact we are seeing that Lady Shri Ram College in fact has ordered that the offline classes for today will be cancelled and all the classes will happen on online mode. And this in fact has happened after in fact, an alleged gang rape case was in fact, reported from Kalkaji, which is just like few meters away from this present college. So certainly, after that, the LSR college administration has gone on record to say that this step has been taken, keeping in mind the safety of the female students in mind. But certainly, the big question is, that is it the right step, canceling the offline classes and making it online? Will it actually be enough for the safety of women? On the other hand, if we talk about the Lieutenant Governor of Delhi has already ordered for the Pink Force, that means more women patrolling the so-called vulnerable sections, be it in fact metro, be it schools, be it universities.

0: उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
1: कॉपी किया, लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया। कॉपी करना इज डिफरेंट, बट सुसाइड करना इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो उसके लिए दुख तो है, सब बच्चों के अंदर सिंपैथी है, साहिल की होनी भी चाहिए। पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं। पर फिर जो केस लगाया गया हेडोला सर के ऊपर वो कंप्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन IIT में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक, मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, इवेंचुअली मेरे को पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट, ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज़ करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे।
2: मेनली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वॉज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था। सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड। यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको मार्क्स भी, अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
3: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल अग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन, एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड, बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है, एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन, व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल।
4: Let's just switch tracks and get you the latest from the National Capital, and it's Lady Shriram College, LSR, that has shifted classes online following the alleged rape of a 17-year-old girl at a nearby Asta Kunj Park. The college has cancelled regular classes since Tuesday and moving towards online classes, citing student safety as its top priority. This comes after a minor girl was allegedly raped by 3 men inside the park near the Kalkaji Mandir on Monday evening. The college is situated just about 2 kilometers from that spot, and now the opposition leaders are slamming the government of Rekha Gupta over this issue. The Congress has said that Delhi government has failed to protect its women. Meanwhile, the Aam Aadmi Party has hit out at Rekha Gupta and said that the crime rates are peaking when it comes to the national capital. Let's listen in to what the Aam Aadmi Party said and what Abhishek Dutt has said of the Congress Party.
5: It is very, very sad that the people of Delhi losing faith in the policing system. Lady Shriram College, which is one of the most prestigious and old college, which sets the narrative for the country, not only Delhi. When their principal comes out and says that, you know, we want to do online classes, it is a point of concern for me. Imagine what these girls who are coming in Delhi, first they see PGs being collapsed, then MCD comes into action after the disaster.
6: Right.
5: Then these girls have asked to evacuate their hostels. The PGs are now rape of such instance where the people have the audacity to say that we are cops. The same thing happened in Jantar Mantar, if you remember those images. Private people posed themselves as cops. So where is the policing system? And I saw the statement by the LG where he talks about pink policing.
6: Right.
5: I want to ask Mr. LG, you'll be surprised to know thousands of Delhi police personnel are posted as private, as security guards to politicians. What is more important today?
7: दिल्ली के हालात बस से बदतर होते जा रहे हैं और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि दिल्ली में अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा है, और अब तो स्थिति ये हो गई है कि लगातार रोज आप अखबार देखेंगे, टीवी देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे के साथ बलात्कार हो रहा है, पार्क में बलात्कार हो रहा है, रोड पे बलात्कार हो रहा है। आप सोचो देश की राजधानी के क्या हालात बना दिए गए हैं, और हम चुप बैठे हुए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला होने के बावजूद भी चुप बैठी हुई है। ये सिचुएशन है, 4 इंजन की सरकार ने दिल्ली की हालत ने बदतर बना दिए कि कॉलेज को कहना पड़ रहा है कि आप ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए। दिल्ली का इतना प्रतिष्ठित कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसको कहना पड़ रहा है ऑनलाइन क्लास। क्यों? क्योंकि आज बच्चियां रोड पे नहीं निकल सकती हैं, बच्चियां घर से बाहर नहीं जा सकती हैं। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि दिल्ली की सरकार जो निकम्मी और निठारा सरकार है वो बच्चियों को ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाएगी, और अब वो रोड पे नहीं निकल

0: रोहेल पहले तो ये तो पहले ये तो विचार पहले करो, पूर्वांचल की बात तो तब करो, पहले सब एक करो। कितने प्रदेश बनाओ
1: भाई,
2: एक सवाल,
0: कितने प्रदेश बनाओ।
3: As take with the news of Uttar Pradesh, a war of words is playing out between the Congress Party and the Samajwadi Party in the state. We have the Samajwadi Party MP Hassan stoking a row, and this is when she said that the only, Akhilesh Yadav is the one who can defeat the BJP in the state, and that the Congress can't do much on its own. Hitting back at her was Congress MP Imran Masood, pointing out that TMC's overconfidence before the Bengal elections, and asked the Samajwadi Party to take lessons from their downfall. Now, Uttar Pradesh Congress in charge, Rajinder Pal Gautam, also weighed in on the alliance pass, and he said that the Congress is prepared to contest all 403 seats alone if it has to, but has insisted that the relationship with Samajwadi Party remains warm. Pacifying all sides is Shivpal Yadav, who said that the call rests only with the two party chiefs. Seat-sharing talks are expected to begin in the month of October. So that's leaving not much time, given the fact that we are literally at the end of September.
4: मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति ऐसा है जो भाजपा को हरा सकता है तो वो सिर्फ अखिलेश यादव जी है। कांग्रेस अपने दम पर कुछ कर नहीं पाएगी। गठबंधन रहा तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं रहा तो ये उनके लिए नुकसान है, हमारे लिए नहीं।
5: गठबंधन को लेकर के आप बयान देते रहते हैं, आपके एक बयान पर पलटवार करते हुए इकरा हसन समाजवादी पार्टी की सांसद, उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले यूपी में कुछ नहीं कर सकती, गठबंधन रहा तो ठीक, नहीं रहा तो कांग्रेस को नुकसान होगा, क्या आप कहना चाहते हैं?
6: देखिए, मैं 2022 के नतीजे कहना चाहता हूं कि देख लें, उसके बाद पता चल जाएगा। 2024 के नतीजे देख लें तो पता चल जाएगा कांग्रेस कहाँ ज़रूरी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। कांग्रेस थी तो 37 सीटें आई, कांग्रेस नहीं थी तो 112 के ऊपर रुक गए, तो ये बात साफ है।
5: लेकिन ये बताइए, नौबत क्यों आ रही है, कि क्या आप लोगों में पार्टियों के बीच में बातचीत नहीं हो रही?
6: नहीं नहीं, करनी चाहिए। देखिए, हम उसका पार्ट नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि कितना उत्साह लोगों के अंदर है, तो ये गलत फहमी कोई ना पाल के रखे। आज पूरे देश के अंदर माहौल राहुल गांधी जी ने बना दिया है, और ये राहुल गांधी के मतवाले हैं, और राहुल गांधी की आवाज़ के ऊपर ही सब काम मजबूती के साथ होगा। तो राहुल जी का हाथ मजबूती से थाम लीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, मजबूती से थाम लीजिए, वरना बंगाल बनने के लिए तैयार रहिए।
5: आपके सहयोगी समाजवादी पार्टी के सांसद की तरफ से बयान आया है इकरा हसन का कि गठबंधन हो तो ठीक है, नहीं होगा तो कांग्रेस का ही नुकसान होगा, अकेले कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी।
7: ये अखिलेश भी बोल दें, अखिलेश जी बोल दें ये बात। राहुल जी ने तो शुरू से कहा है इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की जिम्मेदारी हमारी है। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम अकेले लड़ेंगे। आपको भी हम कितने बार इंटरव्यू दे चुके हैं, हम बार बार कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की, ताकत देने की, और चूंकि बड़ा दल होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हम जो 403 की 403 सीट पर हमारी तैयारी चल रही है, और गठबंधन बहुत मजबूत होगा, और हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार को बेदखल करेंगे, और एक न्यायवादी, समतावादी, संविधान मानने वाली गठबंधन सरकार बनाएगी।
5: इकरा ने यह बयान इसलिए दिया क्योंकि आपके सांसद इमरान मसूद ने कहा कि अखिलेश जी की सक्रियता से कोई फर्क नहीं पड़ता, गठबंधन जब होगा तभी, वरना बंगाल वाला हाल हो जाएगा।
7: नहीं नहीं, उनका बयान सुन लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा सक्रियता से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने ये कहा है कि गठबंधन जो हो वो सीटें जल्दी से जल्दी बातचीत होकर तय हो जाए।
5: तैयारी कह रहे हैं आप 403 की कर रहे हैं, वो ठीक है, मांग कितनी सीटें रहे? मैंने ऐसा तो नहीं कि ज्यादा मांग रहे हैं इसलिए बात शुरू नहीं हो रही।
7: मैंने शुरू से कहा है हिस्सेदारी और सम्मान बराबर का, लेकिन मैंने साथ में एक लाइन और भी बोली है, हम लोग फ्लेक्सिबल हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वाली जहाँ तक बात है वो, उसमें कोई प्रॉब्लम
5: नहीं। सपा के कुछ नेता ये दावा करते हैं कि कांग्रेस को 60-70 से ज़्यादा हम देने के मूड में नहीं है।
7: भैया, ये पता नहीं आप लोग चला रहे हो, हमसे तो ये बात आज तक किसी ने की नहीं।
3: Switching tracks now from Uttar Pradesh to Karnataka. The fund crunch is what the BJP is now highlighting in the state. They have staged a protest, a dharna, against D.K. Shivkumar, the new chief minister of the state, with the BJP mocking D.K. Shivkumar, protesting with bowls in hand. The BJP has staged this Katora protest against D.K. Shivkumar's government, and it is the BJP mocking the government in Karnataka over finances. Preetu, my colleague, joining us in order

0: 2 kilometers, just 2 kilometers between a brutal crime and one of Delhi's most well-known women's colleges. A 17-year-old girl gang-raped in a park in South Delhi. And today, the fear from that crime has traveled far beyond that park. It has reached the gates of Lady Shri Ram College. Classes cancelled, classes moved online, students told to stay away. Think about what that means. A young woman walking to college, a student waiting for a friend, a woman returning home after work, a girl taking the same route she has taken 100 times. What does she think now when she passes that road? Does she look over her shoulder? Does she call someone and say, "I've reached"? Does she wonder whether the next dark stretch of road could become a crime scene? Because this is what a crime against one woman does when it happens in a city where women already have to calculate risk before they step out. And this comes after a series of crimes against women and girls reported across Delhi and the NCR in recent days. Different cases, different victims, but the same chilling consequence: fear. And now that fear is entering classrooms. The basic right to education is being affected by the failure to make women feel safe outside those classrooms. On Breaking Ground, we have to ask a very uncomfortable question. What kind of capital is Delhi becoming when its young women have to choose between their education and their safety? This is not just about LSR. This is about every woman who lives here, every girl who studies here, every family that waits for her to come home, and every parent who today is asking the same question. Is she really safe out there? I'm Vedika Sood, this is Breaking Ground, and these are the headlines we're tracking at the top of 12 noon. Opposition goes after CEC Gyanesh Kumar after two election commissioners reportedly objected to SIR. Claims vindication, says poll body hand in glove with the BJP. EC sources deny charges, say all decisions taken unanimously. Karnataka Finance Department urges spending restraint, warns of cuts across departments. BJP mocks Karnataka fund crunch. BJP leaders protest with bowls in hand. UP minister calls for state's four-way split, says Purvanchal CM will be from Rajbhar community. BJP Neta backs demand, says UP division will boost development. SP slams state's division call. Lady Shri Ram College has shifted classes online following the rape of a 17-year-old girl at nearby Astha Kunj Park. The college cancelled regular classes Tuesday and moved some of today's classes online, citing student safety as its top priority. Probe in IIT Bombay suicide case widens. IIT Bombay professor sent on leave. Police examine Sahil parents' students' phones. Parents' professor likely to be questioned. India's FY27 growth forecast gets a boost. Fitch S&P upgrade India growth forecasts. Fitch raises India's FY27 GDP forecast to 6.9%. S&P raises it to 7%. India's Asian Games medal tally goes up. Meerabai Chanu bags silver in weightlifting. First Asian Games medal for Meerabai. Her jinx finally ends. India's tally now stands at 11. Our top focus, the Election Commission is facing questions over its functioning. As per reports, two election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raised formal objections at least 14 times in the last 10 months. This according to an Indian Express investigation. Their objections cover changes to Form 6, centralization of voter data, software modules developed without their approval, and restrictions on electoral registration officers. The Election Commission has now responded to the questions. ECI sources say all decisions, including SIR, have been unanimous and with the approval of both the Election Commissioners and the Chief Election Commissioner. The report has triggered, of course, sharp political reactions. The Congress has alleged there is, quote unquote, an invisible hand running the poll body, whereas the Samajwadi Party Chief, Akhilesh Yadav, has sought the intervention of India's top court in this controversy.
1: पहले कांग्रेस ने सबूत के साथ हरियाणा इलेक्शन में हुई गड़बड़ियों का और इशारा किया, फिर महाराष्ट्र, और उसके बाद बंगाल में बची खुची कसर भी पूरी कर। फिर जनता ने आवाज उठाई, दूसरी पार्टियों ने भी आवाज उठाई, नेताओं ने आवाज उठाई, जनता ने आवाज उठाई, और मुझे खुशी, मैं बधाई देता हूं कि आज जो तथ्य उभर का सामने आ रहे हैं, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग के 2 मेंबर अपने चीफ, जिसके बारे में हम कह रहे थे कंप्रोमाइज, भाजपा के हाथों पूरी तरीके से समर्पित है, चुनाव जिताओ, जैसे भी हो सके जिताओ, जितनी बेईमानियां करनी पड़े करो।
2: तो आज ये तय हो गया है कि मेजॉरिटी ज्ञानेश कुमार के साथ नहीं थी। ज्ञानेश कुमार अपनी मनमर्जी से फैसले करते थे किस तरह इलेक्शन चलाना है, क्या ईआरओ को करना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है, ये तय करते थे ज्ञानेश कुमार। जोशी साहब और संधु साहब जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, कई बार उन्होंने विरोध किया कि जो आप कर रहे हो ज्ञानेश कुमार जी, और लगभग मेरे ख्याल 40 बार 14 बार 10 महीने में विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो, जो कर रहे हो आप वो संवैधानिक नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है। ये देश अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर चुनाव का फायदा क्या है। होना तो ये चाहिए कि ज्ञानेश कुमार को अभी सस्पेंड करना चाहिए, अभी सस्पेंड करना चाहिए।
3: ये ज्ञानेश कुमार को भी बर्खास्त करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ये देश के अपराधी है। अगर ये मोदी जी नहीं कर रहे तो मैं राष्ट्रपति से आह्वान करूंगा, वो संवैधानिक हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, 3 आर्मी की चीफ है, तो ज्ञानेश कुमार को अब आपके अधिकार में बर्खास्त करो और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। मैं आगे जाकर ये कहूंगा, राष्ट्रपति नहीं करते तो अगर हमारे आर्मी के चीफ में लोकतंत्र और देश के बारे में स्वाभिमान का और अभिमान का कोई जज्बा है तो देश को हुकुमशाहों से बचाने के लिए, ऐसे लोगों को, लोगों से बचाने के लिए आगे आना चाहिए।
4: दैट इज वेरी शॉकिंग, मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन का उद्धव जी के पार्टी ने भी झेला है, हमने भी झेला है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन दुख हो रहा है कि जिस सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान किया, स्वातंत्र्य की इतनी बड़ी लड़ाई इस देश ने खड़ी की, हर घर में एक आदमी तो था जो लड़ रहा था कि आप और मैं सांस ले सके, उसके बाद आई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिए, हर एक को, आपको एक वोट, मुझे एक वोट, आपके कैमरामैन को एक वोट, प्रधानमंत्री जी को भी 8 वोट, ये समता की जो भाषा हुई उस संविधान ने हमें दी, और हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये देश आगे बढ़ेगा। जरूर हमारे मतभेद हो, लेकिन क्या है कि पास होने में मजा कब है, जब मेहनत करके पास करें, कॉपी करके पास करने में क्या मजा।
5: So big, but let me tell you, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that 2 election commissioners objected to many of the CEC's actions, it's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach the CEC and save democracy.
6: SIR का प्रोसेस ही गलत है। SIR को लेके हम लोग भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया। अभी देखा जाएगा जा रहा है कि 3 इलेक्शन कमिश्नर में 2 आपत्ति जताए हैं, तो अभी इलेक्शन कमीशन तो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में है, लॉ मिनिस्ट्री को इसको साफ करना चाहिए। हम तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हमने इम्पीचमेंट पिटीशन दिया था, तो अभी तक उसको फैसला नहीं हुआ, अभी हमको प्रेजेंट करने नहीं दिया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट हमारा रहेगा।
7: नहीं देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था। मैं कई दफा मिला हूं, पिटिशनर भी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में। एक व्यक्ति ज्ञानेश जी का व्यवहार और इसमें तमाम वो बातें आई हैं कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। क्योंकि देखिए वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक्ट चीज है। अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी कम वाट में मैं ये करूंगा और दिस पर्सन मस्ट लीव हिज ऑफिस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन।
8: Now in our country, there is only Gyanesh Kumar, the autocrat, who is controlling the entire election process at the beck and call of Mr. Modi and Mr. Amit Shah. The commission has become redundant because two members of the commission has been registering their opposition, dissent over many of the decisions, controversial decisions that has been taken by Gyanesh Kumar. Last 10 months, 14 times formally they objected to many of the aspects of SIR, mass deletion, addition, Form 6, all sorts of humbug that is happening in this country in the form of SIR. My demand is that Ganesh Kumar should be removed lock, stock and barrel.
9: देखो फॉर्म 6 जो है वो तो जिनका नाम नहीं है उनका फॉर्म में नाम भर के जमा किया जाता है, लेकिन सरकार की मंशा जो है नियत वो ठीक नहीं है। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, पिछड़ों और देश के तमाम लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया। उस मतदान पर भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार डाका डालने काम कर रही।
10: बीजेपी गवर्नमेंट इज प्लेइंग अ गेम विद दिस एसआईआर, सो दे वांट टू रिमूव द मुस्लिम्स फ्रॉम दिस कंट्री, दैट इज देयर मोटिव। दे वांट टू मेक इट अ हिंदू कंट्री विच इज इम्पॉसिबल बिकॉज एज पर लॉ पीपल हैव रजिस्टर्ड एज वोटर्स एंड लिविंग हियर फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम and they have to be allowed to live. The government cannot, by way of SIR, cannot remove their names from voters list. The funniest thing is that former vice president, former home minister LK Advani, all these names they have sent letters as to what is happening. The court had severely condemned it. The BJP's activity, this SIR process, the court has very severely attacked the election commission. The government should take care of it.
5: देखिए पुनः एक बार हम कह चुके हैं कि SIR की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत अब तक समूचे देश भर में पाया गया कि एक एक व्यक्ति के 10-10 बार मतदाता सूची में नाम है। आरोप करने वाले विपक्ष के नेता क्या चाहते हैं, 10 बार मतदाता सूची में नाम हो उनके? और यदि हो, इस प्रकार का उनका समर्थन है, तो उनकी मंशा पे सवाल उठते हैं।

जोशी साहब ने और संधू साहब ने दोनों ने फॉर्म 6 के का विरोध किया लिखित रूप से। जवाब कोई जवाब नहीं, सन्नाटा। मई में उससे पहले उन्होंने विरोध किया कि अपना खुद का चुनाव आयोग का ईआरओ इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, खुद का संस्था का, खुद स्वयं अपने खुद के चुनाव आयोग के आईटी डिपार्टमेंट द्वारा एक्सेस नहीं दिया जाएगा। यानी आप जिसका काम है आपकी कंपनी में काम करना, जो अधिकार क्षेत्र है आपका, आपको आपकी कंपनी की ही आईटी डिपार्टमेंट अपने ही काम के अधिकार क्षेत्र कार्य क्षेत्र में एक्सेस नहीं देता है। ये उन्होंने मई में लिखा। सबसे बोलने वाली चुप्पी, एलोक्वेंट साइलेंस। फिर अगस्त में संधू साहब ने लिखा कि ये तो कमाल है भैया, 20-23 लाख लोगों ने 38 लाख में से पश्चिम बंगाल के विषय में 20-22 लाख लोगों ने जिनका नाम हटा दिया गया था उन्होंने अपील की, लेकिन जो आंकड़ा आप नहीं जानते हैं 16 लाख अपील चुनाव आयोग ने की। चुनाव आयोग ने अपील की उस अफसर के ऑर्डर के विरुद्ध कि आपने इन लोगों को जोड़ा क्यों। तो संधू साहब ने लिख के पूछा ये भी अगस्त में कि साहब आपने किसकी अनुमति से चुनाव आयोग ने अपील की, चुनाव आयोग की अनुमति चाहिए ना, चुनाव आयोग सिर्फ आप हैं क्या। फिर वापस चुप्पी। ये कैसा हाईजैक है, ये कैसा एक व्यक्ति विशेष हाईजैक है, ये कैसी तानाशाही है दो बुलडोजरों की। क्या ये बाकी ईसीज डमीज हैं, जैसा कि लवासा साहब ने लिखा था लिखित रूप से तब, और आशा और विश्वास करते हैं कि लवासा साहब वाला जो एक वक्त दुर्दशा की गई थी वो वापस नहीं होती है। उन्होंने लिखा था कि क्या हम क्लोन्स हैं, मेरे शब्द नहीं है, क्या ये पदासीन लोग व्यर्थ हैं, कि क्या ये सुंदरता बनाने के लिए एक ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट है, किस धर्म का निर्वाह कर रहा है सीसी, प्रशासन का कौन सा धर्म है, राजनीति का कौन सा धर्म है, आप कार्यपालिका से निकले कार्यपालिका का कौन सा धर्म है, आपको तो एक सेकंड भी इस पद में आगे चलने का नैतिक कानूनी किसी प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं बचता। यह है पहला बिंदु। बल्कि मजाक की बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग देश भर में बात करता है वन मैन वन वुमन वन वोट, करता है कि नहीं। चुनाव आयोग ने खुद ने अपने आप को एक ऐसी संस्था बना दी है जहां नो वन वोट नो वन वैल्यू, तीन लोगों की बराबरी वोट नहीं है। इन चार महत्वपूर्ण मुद्दों में जिसमें आने वाला हूं मैं, उसमें एक व्यक्ति का एकल वोट है, वन मैन वन वोट नहीं है। उच्चतम न्यायालय का 95 का निर्णय डस्टबिन में पड़ा है, लिखित विरोध का जवाब नहीं है, संवैधानिक जवाबदेही नहीं है। दूसरा इसका पहलू है जो कि बड़ा संक्षिप्त दो लाइन का पहलू है, पारदर्शिता। हम जानते हैं कि नहीं होगा, लेकिन हम बड़ा औपचारिक रूप से मांग करते हैं कि जितने भी ये डिसेंट नोट्स हैं, जितने भी ये लिखित विरोध हैं, आप समक्ष रखिए देश के। ये नहीं बोली हमको कि आरटीआई में अप्लाई करो, क्योंकि हम जानते हैं आरटीआई में क्या करेंगे आप, निश्चित रूप से निरस्त करेंगे, फिर कहेंगे अपील करो, फिर कहेंगे अपील करो। आपका जवाबदेही बनती है देश के संवैधानिक संस्था के रूप से कि सामने रखिए। तीसरा बिंदु, ये क्या मुद्दे थे जिनके विषय में ये चुनाव आयोग के वरिष्ठ मेंबरान दोनों संधू जी और जोशी जी कई सारे बहुत महत्वपूर्ण पदों से आए हैं, सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ऊपर इनका दर्जा रहा है, उन्होंने किसके बारे में लिखा। मैं चार बिंदु आपके सामने रखना चाहता हूं जो भयानक हैं। फॉर्म 6 में बड़ा सरल करने वाला हूं, अखबार पढ़ने में बड़ा टाइम लगता है, उसमें लाइन में जाना पड़ता है, और मैं वापस बधाई दूंगा कि शोध के साथ लिखा गया है, लेकिन मैं उस शोध को सरल करना चाहता हूं आपके सामने। फॉर्म 6 वैसा फॉर्म है जो पहली बार आप 18 साल एक दिन के हुए, आज आपका उम्र 18 साल दो दिन हुई, ये व्यक्ति या ये महिला जाके अर्जी देती है कि मुझे वोटर बनना है पहली बार। तो पहली बार इसमें प्रश्न आता है, आप बन नहीं सकते, आप उसमें ऑनलाइन

0: नहीं कर सकते। प्रश्न आता है कि हाँ हम बनाएंगे, आप पहले ऑनलाइन भरेंगे, लेकिन ऑनलाइन भरने से पहले बताइए कि क्या आपके माँ बाप या आपके दादा दादी पिछले एसआईआर में थे कि नहीं। चलिए ये मान लिया, ये कहां है फॉर्म सिक्स में? नहीं है। आपने बदला फॉर्म सिक्स? हां। किसने बदला? चुनाव आयोग ने नहीं बदला, सीसी ने बदला। और जब चुनाव आयोग के बाकी मेंबरान ने पूछा तो सन्नाटा साइलेंस का। और सबसे रोचक बात लिखा क्या है संधु साहब और जोशी साहब ने, कि इस फॉर्म को सिर्फ सरकार बदल सकती है। ये रूल्स और रेगुलेशंस में आता है, चुनाव आयोग नहीं बदल सकता इसको। अब इसका दुष्प्रभाव देखिए, आज मेरे परिवार में दो लोग 18 के हो जाते हैं, इनके परिवार में चार लोग 18 के होते हैं अगले साल, इनके परिवार में चार लोग 18 के होते हैं बाद में। यानी हर युवा व्यक्ति जो वोट में आने वाला है वो वोटर बनने में बहुत संदिग्ध हो जाएगा, बहुत सारे लोग बन ही नहीं पाएंगे। उनकी नागरिकता नहीं देखी जाएगी, उनकी उम्र नहीं देखी जाएगी, उनकी रहाइश रेजिडेंस नहीं देखी जाएगी, उनका आधार कार्ड नहीं देखा जाएगा। ये देखा जाएगा कि आपके बाप दादा और पिता और माता आपके उस एसआईआर में, वो पुराने एसआईआर में थे कि नहीं। अब इसका एक और तीसरा दुष्प्रभाव देखिए, ये सर्वमान्य है कि 13 करोड़ लोग, 13 करोड़ ज्यादातर यूरोपियन देशों की आबादी से ज्यादा होता है।
1: That's the latest statement coming from the Congress against the Election Commission, which is facing questions over its functioning. As per reports, and this is based on an Indian Express investigation, two election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raised formal objections at least 14 times in the last 10 months. Their objections covered changes to Form 6, centralization of voter data, software modules developed without their approval, and restrictions on electoral registration officers, the EROs. Congress MP Rahul Gandhi has questioned ECI over this and said that vote chori is crime against people. The report has triggered sharp political reactions. The Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav has sought intervention of the Supreme Court in the matter. The Election Commission has now responded to the questions. ECI sources say all decisions, including SR, have been unanimous and with the approval of both the election commissioners and the chief election commissioner.
2: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए। टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
3: ये ज्ञानेश कुमार को भी बर्खास्त करके उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, ये देश के अपराधी है। अगर ये मोदी जी नहीं कर रहे हैं तो मैं राष्ट्रपति से आह्वान करूंगा, वो संवैधानिक हेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, 3 आर्मी की चीफ है, तो ज्ञानेश कुमार को अब आपके अधिकार में बर्खास्त करो और उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करो। मैं आगे जाकर ये कहूंगा, राष्ट्रपति नहीं करते तो अगर हमारे आर्मी के चीफ में लोकतंत्र और देश के बारे में स्वाभिमान का और अभिमान का कोई जज्बा है तो देश को हुकुमशाहों से बचाने के लिए, ऐसे लोगों को, लोगों से बचाने के लिए आगे आना चाहिए।
4: दैट इज वेरी शॉकिंग, मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन का उद्धव जी के पार्टी ने भी झेला है, हमने भी झेला है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन दुख हो रहा है कि जिस सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान किया, स्वातंत्र्य की इतनी बड़ी लड़ाई इस देश ने खड़ी की, हर घर में एक आदमी तो था जो लड़ रहा था कि आप और मैं सांस ले सके। उसके बाद आई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिए, हर एक को, आपको एक वोट, मुझे एक वोट, आपके कैमरामैन को एक वोट, प्रधानमंत्री जी को भी एक वोट। ये समता की जो भाषा हुई उस संविधान ने हमें दी, और हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये देश आगे बढ़ेगा। जरूर हमारे मतभेद हों, लेकिन क्या है कि पास होने में मजा कब है, जब मेहनत करके पास करें, कॉपी करके पास करने में क्या मजा।
5: So big, but let me tell you, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that two election commissioners objected to many of the CEC's actions, It's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach this

0: CEC and save democracy.
1: SIR का प्रोसेस ही गलत है. SIR को लेके हम लोग भी बहुत ऑब्जेक्शन उठाया, सुप्रीम कोर्ट तक गया. अभी देखा जाएगा जा रहा है कि तीन इलेक्शन कमीशनर में दो आपत्ति जताए हैं. तो अभी इलेक्शन कमीशन तो लॉ मिनिस्ट्री के अंडर में है, लॉ मिनिस्ट्री को इसको साफ करना चाहिए. हम तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हमने इम्पीचमेंट पिटीशन दिया था, तो अभी तक उसको फैसला नहीं हुआ. अभी हमको प्रेजेंट करने नहीं दिया गया, लेकिन ये प्रोटेस्ट हमारा रहेगा.
2: नहीं देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था. मैं कई दफा मिला हूँ, पिटिशनर भी हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में. मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में. एक व्यक्ति ज्ञानेश जी का व्यवहार, और इसमें तमाम वो बातें आई हैं कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए. क्योंकि देखिए, वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक्ट चीज है. अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी, कम वॉट में मैं ये करूंगा, और दिस पर्सन मस्ट लीव हिज ऑफिस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन.
3: इलेक्शन कमिश्नर तो भाजपा के पोलिंग एजेंट जैसा इनका बर्ताव है. मैं इनसे मिला हूं, निहायत ही घटिया इंसान है. हर बात पे कुतर्क देने की इनको आदत है. इनको तो जेल में डालना चाहिए और इनको छोड़ना नहीं चाहिए, वरना ये आदमी देश से भाग जाएगा.
4: मिशन अस सच नाउ इन आवर कंट्री देयर इज ओनली ज्ञानेश कुमार द ऑटोक्रैट हु इज कंट्रोलिंग द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस एट द बेक एंड कॉल ऑफ मिस्टर मोदी एंड मिस्टर अमित शाह. द कमीशन हैज बिकम रिडंडेंट बिकॉज टू मेंबर्स ऑफ द कमीशन has been registering their opposition, dissent over many of the decisions, controversial decisions that has been taken by Ganesh Kumar. Last 10 months, 14 times formally they objected to many of the aspects of SIR, mass deletion, addition, Form 6, all sorts of humbug that is happening in this country in the form of SIR. My demand is that Ganesh Kumar should be removed lock, stock and barrel.
5: देखो, फॉर्म 6 जो है वो तो जिनका नाम नहीं है उनका फॉर्म में नाम भर के जमा किया जाता है, लेकिन सरकार की मंशा जो है, नियत वो ठीक नहीं
6: है.
5: ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के करोड़ों करोड़ों दलितों को, किशोरों और देश के तमाम लोगों को मतदान करने का अधिकार दिया. उस मतदान पर भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार डाका डालने काम कर रही.
7: It continues like this. If we do not have people like the two election commissioners, I don't want to take their name at this point of time. I don't know what trouble they are going to go. Unko ED ke chhape padenge, ab income tax ke chhape padenge, unke saath kya hoga? But if we continue like this, I mean, there will be a time when we are going to resemble a banana republic. There will be no democracy.
8: BJP government is playing a game with this SIR. So they want to remove the Muslims from this country. That is their motive. They want to make it a Hindu country, which is impossible because as per law, people have registered as voters and living here for quite a long time and they have to be allowed to live. The government cannot, by way of SIR, cannot remove their names from voters list. The funniest thing is that former Vice President, former Home Minister L.K. Advani, all these names, they have sent letters as to what is happening. The court had severely condemned it. The BJP's activity, this SIR process, the court has very severely attacked the election commission. The government should take care of it.
0: देखिए, पुनः एक बार हम कह चुके हैं कि SIR की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत अब तक समूचे देश भर में पाया गया कि एक एक व्यक्ति के 10-10 बार मतदाता सूची में नाम है।

0: सही डिमांड्स हैं, पर फिर जो केस लगाया गया हेडोला सर के ऊपर वो कम्प्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस डिस्क्रिमिनेशन आईडी बॉम्बे में नहीं होता है जितना मैंने जाना है अभी तक, मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था इवेंचुअली मेरे को पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट, ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे।
1: टेली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वॉज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था। सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड। यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं अगर आपको मार्क्स भी अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
2: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल एग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट, स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड। बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल।
3: In news from Uttar Pradesh now, State Minister O.P. Rajbhar has started a debate demanding the split of Uttar Pradesh. UP Minister O.P. Rajbhar has called for the state to be divided into four states, Purvanchal, Madhyanchal, Bundelkhand and Harit Pradesh. Rajbhar has also linked the demand to the caste census, saying the division of the state is inevitable. BJP leader Sanjeev Balyan has now backed the demand, arguing that smaller states could boost development and improve access to institutions like AIIMS and the High Court. But the Samajwadi Party has rejected the proposal. SP has questioned how many states would be created, arguing that smaller states could lose significance and that the government should first address corruption.
4: देखिए जिस दिन ये तो तय है कि प्रदेश का बंटवारा एक दिन होना है, जब प्रदेश का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल मध्यांचल बुंदेलखंड हरित प्रदेश, तो पूर्वांचल में आप उठा के देखिएगा जहां हम लोग बैठे हैं अम्बेडकर नगर से शुरू करेंगे तो पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट राजभर जाति का है। तो इस नाते कोई भी पार्टी जो भी गठबंधन करेगा तो वे पहले ही वो तय होगा कि पूर्वांचल राज्य जिस दिन बनेगा उसका मुख्यमंत्री राजभर का बेटा होगा।
5: राजभर जी के मुंह में घी शक्कर, हम तो पहले से बात करते रहे, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अगर अलग स्टेट बनते हैं तो बहुत खुशी की बात है। देखिए हमारा एम्स कहाँ है, रायबरेली 700-750 किलोमीटर, एक एम्स गोरखपुर है, दोनों पास में है। शायद मैं और आप अगर बीमार हो जाते हैं एम्स में, कितनी अच्छी सोच थी कि हर प्रदेश में एक एम्स हो, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया। हमारा हाईकोर्ट कहाँ है, बहुत दूर, हम और आप न्याय के लिए नहीं जा सकते। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जब केंद्र सरकार से कोई योजना बनती है तो कहते हैं घर प्रदेश को एक दे दो, तो सिक्किम को 15 लाख की आबादी को भी एक मिलती है, गोवा को 14 लाख की आबादी को भी एक मिलती है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को भी एक मिलती है। तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, प्रदेश का विकास होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश बनेगा।
6: अच्छा, जब पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा, फिर दक्षिण भी, दक्षिण का भी बनेगा, बुंदेलखंड बनेगा, फिर रोहेलखंड बनेगा, रोहेलखंड बनेगा। पहले तो ये तो विचार पहले करो, पूर्वांचल की बात तो तब करो, पहले सब एक करो, कितने प्रदेश बनाओ
7: भाई,
6: कितने प्रदेश बनाओ।
3: A disturbing road rage incident in Mizoram has ended in horror with an army soldier beaten to death following a traffic dispute. The 29-year-old Assam Regiment soldier was attacked by a group after an argument escalated. Despite the dispute beginning on the road, the confrontation turned deadly, leaving the soldier dead and his companion injured. The police have arrested 8 people, including 2 minors, in connection with the brutal attack. His family spoke to NDTV. They are demanding justice.
8: Please tell me what really happened. I'm passing on our condolences from the NDTV family. It's a horrific case. It needs justice. 8 people have been arrested. But what really happened? Could you narrate the story to us?
9: Yes, sir. Actually, he came from Jammu and Kashmir.

0: आपके कैमरामैन को एक वोट, प्रधानमंत्री जी को भी एट वोट। ये समता की जो भाषा हुई उस संविधान ने हमें दी और हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये देश आगे बढ़ेगा। जरूर हमारे मतभेद हो, लेकिन क्या है कि पास होने में मजा कब है? जब मेहनत करके पास करें। कॉपी करके पास करने में क्या मजा?
1: So big, big, big. But let me tell you, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that two election commissioners objected to many of the CEC's actions, it's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach the CEC and save democracy.
2: नहीं, देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था। मैं कई दफा मिला हूं, पिटिशनर भी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में। एक व्यक्ति ज्ञानेश जी जिसका व्यवहार, और इसमें तमाम वो बातें आई हैं कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। क्योंकि देखिए, वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक्ट चीज है। अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी, कम वाट में मैं ये करूंगा, और दिस पर्सन मस्ट लीव हिज ऑफिस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन।
3: There is only Ganesh Kumar, the autocrat, who is controlling the entire election process at the beck and call of Mr. Modi and Mr. Amit Shah. The commission has become redundant because two members of the commission has been registering their opposition, dissent over many of the decisions, controversial decisions that has been taken by Ganesh Kumar. Last 10 months, 14 times formally they objected

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हो इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
1: इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट दे शुड बी टेकन बाय अ मेजोरिटी डिसीजन। सो एंड देयर टू इलेक्शन कमिश्नर्स वर्सेस द सीईसी कैन बी द मेजोरिटी। So the commission is the majority, and the fact that the majority was not being taken into account and CEC was unilaterally taking action, they are all illegal. Very clearly it has come out that all those decisions were illegal, and any illegal decision should be undone and the guy should be held responsible.
2: सुना करते थे कि मोदी जी और अमित शाह वोटों की चोरी करके एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के, वो है ज्ञानेश कुमार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए।
3: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा कि तीन आयुक्त होते हैं इस चुनाव आयोग में, और जो दो आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास एक लेटर देकर कंप्लेंट दी है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की मनमानी चल रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और प्रजातंत्र मारा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे गैंग होती है ना, जो पार्टी तोड़ती है, पार्टी की चोरी करती है और प्रजातंत्र का खून करती है, हत्या करती है, तो वो उस गैंग का पर्दाफाश इन दोनों ने किया है।
4: दैट इज वेरी शॉकिंग। मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन का उद्धव जी के पार्टी ने भी झेला है, हमने भी झेला है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन दुख हो रहा है कि जिस सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान किया, स्वातंत्र की इतनी बड़ी लड़ाई इस देश ने खड़ी की, हर घर में एक आदमी तो था जो लड़ रहा था कि आप और मैं सांस ले सके। उसके बाद आई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिए, हर एक को, आपको एक वोट, मुझे एक वोट, आपके कैमरामैन को एक वोट, प्रधानमंत्री जी को भी एक वोट। ये समता की जो भाषा हुई उस संविधान ने हमें दी, और हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये देश आगे बढ़ेगा। जरूर हमारे मतभेद हो, लेकिन क्या है कि पास होने में मजा कब है, जब मेहनत करके पास करें, कॉपी करके पास करने में क्या मजा।
5: सो बिग बट लेट मी टेल यू, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that two election commissioners objected to many of the CEC's actions, it's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach the CEC and save democracy.
6: नहीं, देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था। मैं कई दफा मिला हूं, पिटिशनर भी हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में। एक व्यक्ति ज्ञानेश जी का व्यवहार, और इसमें तमाम वो बातें आई है कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शन रेज किए गए। क्योंकि देखिए, वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक्ट चीज है। अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी कम वॉट

0: Welcome back. Uttar Pradesh Minister O.P. Rajbhar has started a debate raking up the demand to split Uttar Pradesh. The UP minister has called for UP to be divided into four states, Purvanchal, Madhyanchal, Bundelkhand and Harit Pradesh. Rajbhar also linked the demand to the caste census, saying the division of the state is inevitable. BJP leader Sanjeev Balyan has backed the demand, arguing that smaller states could boost development and improve access to institutions like AIIMS and the High Court. But the Samajwadi Party has rejected the proposal. SP questioned how many states would be created, arguing that smaller states could lose significance and that the government should first address corruption.
1: देखिए जिस दिन ये तो तय है कि प्रदेश का बंटवारा एक दिन होना है. जब प्रदेश का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल, मध्यांचल, बुंदेलखंड, हरित प्रदेश. तो पूर्वांचल में आप उठा के देखिएगा, जहां हम लोग बैठे हैं अम्बेडकर नगर से शुरू करेंगे तो पूरे पूर्वांचल में सबसे ज़्यादा वोट राजभर जाति का है. तो इस नाते कोई भी पार्टी जो भी गठबंधन करेगा तो वे पहले ही वो तय होगा कि पूर्वांचल राज्य जिस दिन बनेगा उसका मुख्यमंत्री राजभर का बेटा होगा.
2: राजभर जी के मुंह में घी शक्कर. हम तो पहले से बात करते रहे, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए अगर अलग स्टेट बनते हैं तो बहुत खुशी की बात है. देखिए हमारा एम्स कहाँ है, रायबरेली 700-750 किलोमीटर, एक एम्स गोरखपुर है, दोनों पास में है. शायद मैं और आप अगर बीमार हो जाते हैं उसमें कितनी अच्छी सोच थी कि हर प्रदेश में एक एम्स हो, लेकिन उसका फायदा नहीं मिल पाया. हमारा हाईकोर्ट कहाँ है, बहुत दूर, हम और आप न्याय के लिए नहीं जा सकते. तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं कि जब केंद्र सरकार से कोई योजना बनती है तो कहते हैं घर प्रदेश को एक दे दो, तो सिक्किम को 15 लाख की आबादी को भी एक मिलती है, गोवा को 14 लाख की आबादी को भी एक मिलती है और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी को भी एक मिलती है. तो अगर ऐसा हो जाए तो बहुत बेहतर रहेगा, प्रदेश का विकास होगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और अच्छा प्रदेश बनेगा.
3: अच्छा, जब पूर्वांचल बनेगा तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी बनेगा, फिर दक्षिण भी, दक्षिण का भी बनेगा, बुंदेलखंड बनेगा, फिर रोहेलखंड बनेगा, रोहेलखंड बनेगा. पहले तो ये तो विचार पहले करो, पूर्वांचल की बात तो तब करो, पहले सब एक करो. कितने प्रदेश बनाओ, कितने प्रदेश बनाओ.
0: News now from Karnataka, and Chief Minister D.K. Shivkumar is facing political attack over the state's finances. The BJP staged a Katora protest against the state government, mocking the government over the fund crunch. A BJP accused the government of becoming bankrupt and alleged that it is spending money wastefully. BJP is also demanding the resignation of the Chief Minister over this issue. Now, the Karnataka government, however, hit back, questioning why the BJP is demanding the Chief Minister's resignation, saying the centre must release funds that are due to the state, to Karnataka, and also provide assistance for the drought situation. The political sparring comes amid a warning from the Karnataka Finance Department over spending pressures and possible budget cuts.
4: See, we have already very explicitly told our stand that we will be singing only the first two stanzas, and wherever central ministers are there or the central government protocol needs to come in and the governor is there, we will sing all the four stanzas.
5: This is the only dream of our Chief Minister D.K. Shivkumar is one satellite township in Bidadi, underground tunnel road in Bangalore, and one more airport project in Kanakpura. And now his interest is moving from Bangalore to Mangalore. Even the Congress MLAs are talking. His real estate interest has moved from Bangalore to Mangalore. That's the reason why he's talking about tourism policy in Mangalore.

0: Welcome back. India's 28-year wait for an Asian Games weightlifting medal finally ended with Mirabai Chanu securing a silver in the women's 49-kilo category. Mirabai lifted a combined 198 kilograms, 87 kilos in the snatch, and 111 kilos in the clean and jerk. This is Mirabai's first Asian Games medal, adding to her Olympic, World Championship and Commonwealth Games successes. In fact, NDTV's Borya Majumdar spoke to Mirabai Chanu. Listen in.
1: Mira, खत्म हो गया जो इतना दिन से आप कोशिश कर रहे थे सर कोशिश कर रहे थे आज सुबह भी इनके साथ मेरा बात हो रहा था और इन्होंने मेरे से कहा चिंता मत करो सब कुछ ऑन ट्रैक है एफर्ट एकदम इट वाज ब्रिलियंट
2: हाँ हमने बहुत कोशिश किया था ये सर. बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कमल गेम्स के बाद बहुत टाइम भी मिल रहा था तो हम पूरा हम कॉन्फिडेंस थे कि जो इस बार एशियन गेम्स में जरूर एक मेडल हम जरूर लेना है तो सर को भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस थे हर टाइम में हर ट्रेनिंग में तो बस यही सर का जो कॉन्फिडेंस है मेरा स्ट्रॉन्ग मतलब उनसे ताकत मिलते हैं तो बस मैंने भी ट्राई किया कि इस बार तो पक्का मुझे जरूर एक मेडल जरूर इंडिया के लिए देना है
1: सर आपने एग्जैक्टली जो बोला था सुबह भी बोला था जितना दिन मेरे से आपका 30-32 बार बात हुआ है कॉमनवेल्थ के बाद एग्जैक्ट जो बोला आपने वही हुआ
3: एक्चुअली बहुत टाइम से टोटल जो है जितने भी कंपटीटर हैं उनको स्टडी कर रहे थे और काफ़ी लंबी प्रैक्टिस है जो सबसे मेन पॉइंट था कि हम इंजरी फ्री यहाँ तक आना चाहते थे और हम इंजरी फ्री स्टेज पे थे तो मुझे पता था कि हम अपना मतलब मेडल के लिए जो भी बेस्ट टोटल डालना पड़ेगा डाल सकते हैं और उसी हिसाब से आपको मैं बता रहा था कि ये हम कर सकते हैं और जो मेरा आइडिया था अगर हम और भी 2-4-5 किलो की ज़रूरत पड़ती सिल्वर के लिए तो कैपेसिटी थी हम जा सकते थे स्नैचों में इसीलिए हम अपने आप को सेफ लेकर चले कि हम अटैम्प्ट क्लियर करते हैं कि केजी की वैल्यू है तो अब नो डाउट जो है गोल्ड मेडलिस्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी हमारे से तो मैं
4: वह प्रेस नोट भी मैं लेके आया हूँ जो ECI ने जारी किया है मैंने भी उसे पढ़ा है मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा आप सिचुएशन देखिए अगर तीनों इलेक्शन कमिश्नर आपस में मैं बहुत सीधे शब्दों में समझाता हूं ताकि गांव में बैठी मेरी दादी मां भी समझ सके अगर तीनों कमिश्नर जो इलेक्शन करवाते हैं देश में उनके बीच में आपस में संवाद नहीं होता है किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं होती है किसी प्रकार का सलाह मशवरा नहीं होता है और सब जी हां करते रहते हैं तो यही विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो डिक्टेटरशिप है जी इन तीनों को तो इसी सरकार ने बनाया है और ये तीनों जी हां करते रहते हैं ये तीनों जो हैं गोदी वाले हैं आपको तो गोदी मीडिया बोलते हैं ये तीनों भी गोदी वाले हैं ऐसे ही बोलते हैं ना अब ये तीनों के बीच में 14 पत्राचार हुआ है These are official deliberations between three election commissioners. What we gather from media, कोई भारतीय जनता पार्टी जाके चिट्ठी नहीं पढ़ती है मीडिया में जो आया है कि तीनों के बीच में कुछ ऑफिशियल deliberations हुए हैं जो कि एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी है आप मुझे बताइए लोकतंत्र में अगर किसी मुद्दे को लेकर हम सब आपस में चर्चा करते हैं कि यह विषय ठीक रहेगा या नहीं वह विषय ठीक रहेगा नहीं और इस पर पत्राचार भी होता है और इस पर नोटिंग्स भी होती है और अंततोगत्वा उस पर एक निर्णय होता है तो लोकतंत्र यह है या हां से हां मिलाकर सभी चिट्ठी एक जैसी होनी चाहिए वह लोकतंत्र है आई वुड से दैट टुडे ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज हैव फॉलन इनटू द ट्रैप वेयर दे सेड दैट द इलेक्शन कमिश्नर एंड दिस गवर्नमेंट was a dictatorial government. Rather, I would say that this is pure democracy. जहां पर deliberations हो रहे और election commission ने अपने पहले ही छंद में अपने पहले ही paragraph में एक बात बड़े स्पष्टता के साथ लिख दिया है सारे official democratic deliberation

0: होने के बाद अंततो गत्वा एट द एंड SIR जो हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, वो यूनानिमिटी के साथ हुआ, अर्थात हम सब ने, तीनों कमिश्नर उसमें यूनानिमस थे, उसमें किसी प्रकार का मतांतर, मतभेद, मनांतर नहीं था, देवर ऑल ऑन द सेम पेज। कुल मिलाकर के कहानी आज की इतनी है कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इन इंडिया इज अंडर अ डिक्टेटोरियल रूल, दे आर इन फंक्शनिंग इन अ डेमोक्रेटिक मैनर एंड ऑफकोर्स दे अपहोल्डिंग द डेमोक्रेसी ऑफ दिस कंट्री। लोकतांत्रिक तरीके से काम करके संविधानिक संस्थाएं लोकतंत्र को बचा रही हैं। अब हमारे ऊपर आक्षेप क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आक्षेप है कि हम वोट चोरी करके जीत जा रहे हैं। ये बार बार वोट चोरी का जो आक्षेप लगाया गया, मैं बहुत दूर नहीं जाता हूं, मैं तो लेके बहुत सारे कागज आया हूं, आंकड़े तो मैं लेके आया हूं 2014 से। मैं आरंभ करता हूं बंगाल से ही, मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूं क्योंकि हरियाणा के भी उदाहरण दिए गए। महाराष्ट्र के वोट चोरी के एलिगेशन के पश्चात मैंने खुद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और किस प्रकार, किस सीट पर कितने वोट डिलीट हुए थे और उन सीटों पर किसकी जीत हुई थी, यह आंकड़े मैंने स्वयं ने रखे थे, तो मैं दोबारा वो नहीं खोलूंगा पन्ना। मगर मैं वेस्ट बंगाल का, क्योंकि बंगाल का चुनाव हाल फिलहाल का है और सभी अभी हाय तौबा मचा रहे हैं कि देख लिया बंगाल का चुनाव चोरी हो गया था, तो चलिए पिटारा खोल के देखते हैं कि जहां से सर्वाधिक डिलीशन हुआ, व्हाट इज द एडिफिस ऑन विच द एक्यूजेशन ऑफ द ऑपोजिशन स्टैंड्स, किस पर एक्यूजेशन खड़ा है। द एडिफिस इज दैट बिकॉज ऑफ डिलीशन ऑफ वोटर्स फ्रॉम द वोटर लिस्ट द भारतीय जनता पार्टी वन एंड द ऑपोजिशन लॉस्ट। नाउ लेट मी प्रूव द कॉन्ट्ररी टू इट। आप बंगाल में जाइए, बंगाल में सबसे अधिक वोट कटी 20 विधानसभा सीटों पर। यह इंडियन एक्सप्रेस ने ही रिपोर्ट बनाया है, ये उन्हीं के रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं। 20 विधानसभा सीटों की जांच की गई और सबसे ज्यादा उनमें नाम कटे। उनमें 13 सीटों पर ममता बनर्जी की टीएमसी की जीत हुई, एक सीट पर कांग्रेस की जीत हुई और 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उन सीटों का नाम भी पढ़ लेता हूं ताकि आप वेरीफाई कर ले कि हमने वोट चोरी की तो जीत किसी और की कैसे हुई। शमशेरगंज में 74,775 वोट डिलीट हुए, जीता टीएमसी। लालगोला 55,420 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। भगवानगोला 47,493 वोट्स डिलीट हुए, जीती टीएमसी। रघुनाथगंज 46,100 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। मोटियाबुर्ज 39,579 डिलीट हुए, जीती टीएमसी। फरक्का 38,222 डिलीट हुए, जीता कांग्रेस। सूती 37,965 वोट डिलीट हुए, जीती टीएमसी। मोथाबाड़ी 37,255 डिलीट हुए, जीती टीएमसी। इतने सीट्स पे टीएमसी और कांग्रेस ही हम सुन रहे हैं, सर्वाधिक वोट जहां डिलीट हुए। अब जंगीपुर 36,581 डिलीट हुए, जीती बीजेपी। रतुआ 35,573 बीजेपी। तो कुल मिलाकर के मैं 200 सीटों का नाम नहीं पढ़ रहा हूं, मगर मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि 20 विधानसभा सीट जहां पे सर्वाधिक वोट डिलीट SIR से हुए, वहां सर्वाधिक जीत टीएमसी की हुई। कांग्रेस भी एक सीट जीती, भारतीय जनता पार्टी 6 सीट ही जीती है। अब एक दूसरा मुद्दा उठता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मैं आज एकदम बिल्कुल स्पष्ट यहां कहने वाला हूं, ये जो आक्षेप हमारे पे लगाया जाता है कि वर्तमान में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके आने के पश्चात और SIR के आरंभ होने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके चुनाव जीत रही है और कुछ खेल कर रही है। कब वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कब हुआ? 19 फरवरी 2025। उससे पहले कितने चुनाव हुए थे और क्या स्थिति थी देश में, मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2014 का इलेक्शन कराया था लोकसभा का, 2019 का लोकसभा का इलेक्शन कराया था, 2024 के लोकसभा का इलेक्शन कराया था, और तीनों में नतीजे क्या थे? 2014 में बीजेपी और एनडीए 282 सीट्स पे, 2019 के लोकसभा में बीजेपी एनडीए 303 सीट पे, और 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी एनडीए 240 बीजेपी 240 सीट पे, एनडीए कुल मिलाकर 293 सीट्स पे। तो ये सब कुछ 19 फरवरी 2025 से पहले हुआ। 2014 में कौन कौन से चुनाव हुए, ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ा लंबा रहेगा, मगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ये बार बार हम वोट चोरी करके जीत रहे हैं और कुछ घालमेल है, यह भ्रम, यह भ्रामक अवस्था देश में तोड़ने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कुछ जो साथी घटक दल हैं, उनके झूठ के पुलिंदों को तोड़ना और गांव के लेवल तक तोड़ना जरूरी है, ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो, इसलिए नहीं, ताकि देश के संविधान के ऊपर एक गरीब मां का भरोसा भी ताकतवर रूप से बना रहे। 2014 में महाराष्ट्र में चुनाव हुए, बीजेपी जीती, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सरकार भी बनती है। हरियाणा में बीजेपी की मेजॉरिटी आती है, झारखंड में बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, जम्मू कश्मीर में बीजेपी पीडीपी की सरकार बनती है, 2015 में जम्मू कश्मीर में पुनः बीजेपी बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनती है, बिहार में एनडीए हारती है 2015 में, 2016 में आसाम में बीजेपी जीतती है, केरल में एनडीए हारती है, वेस्ट बंगाल में एनडीए हारती है, तमिलनाडु में एनडीए हारती है, 2017 में उत्तर प्रदेश बीजेपी जीतती है, उत्तराखंड बीजेपी जीतती है, गोवा बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, मणिपुर बीजेपी लेड गवर्नमेंट बनती है, हिमाचल प्रदेश बीजेपी मेजॉरिटी, गुजरात बीजेपी मेजॉरिटी, 2018 में त्रिपुरा बीजेपी सरकार, नागालैंड बीजेपी लेड कोएलिशन एनडीए सरकार, मेघालय बीजेपी लेड कोएलिशन एनडीए सरकार, 19 में अरुणाचल प्रदेश बीजेपी मेजॉरिटी, ओडिशा में बीजेपी हारती है बीजेडी जीतती है, महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस जीतती है, 2020 बिहार में एनडीए जीतती है सरकार बनाती है। इसी प्रकार मैं पूरे 2024 तक का चुनाव नतीजा आपके सामने रख सकता हूं, जो दिखाता है कि बहुत ही स्मूथली इलेक्शन प्रोसेस 2014 से अब तक चलता आ रहा है। अब जहां तक धांधलियों का सवाल है, ऐसा तो नहीं हो सकता कभी विश्व में कि कांग्रेस पार्टी मौजूद है और धांधली ना हुआ हो। धांधली का जन्म, घोटालों का जन्म कांग्रेस से ही हुआ है, तो इसलिए धांधली, घोटालेबाजी, गड़बड़ियां, कॉम्प्रोमाइज ऑफ द कांग्रेस पार्टी और इलेक्शन कमीशन, मैं अपने अंतिम हिस्से में इसको एक्सपोज करता हूं प्रेस वार्ता के। कौन कौन से ऐसे इलेक्शन कमिश्नर्स थे जो आगे चलकर या तो कांग्रेस से मंत्री बने, या तो कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े, या कांग्रेस ज्वाइन किए? केवीके सुंदरम 1958-1967 थे चेयरमैन ऑफ लॉ कमीशन और पद्म विभूषण दिया गया। नागेंद्र सिंह 1972-1973 ये इलेक्शन कमिश्नर थे, पद्म विभूषण दिया गया। आर के त्रिवेदी 1982-1985 पद्म विभूषण और गवर्नर का पोस्ट भी दिया गया। वी एस रमादेवी 1990 में इलेक्शन कमिश्नर थी, उन्हें गवर्नर बनाया गया। टी एन सेशन 1990-1996 कॉन्टेस्टेड इलेक्शन फ्रॉम कांग्रेस इन 1996। और टी एन सेशन का मुझे बोलना नहीं चाहिए, मगर मेरे पास आर्टिकल है, मैं दिखाऊंगा, थोड़ा अनपार्लियामेंट्री शब्द है। उन्होंने अपने जो को कमिश्नर्स बनाए गए थे उनके समय, उनको डोंकीज एंड रास्कल्स भी कहा था। ये हेडलाइन आर्टिकल छपा था कि दे आर डोंकीज एंड रास्कल्स, शुड नॉट बी अलाउड इन टू द इलेक्शन ऑफिस। इस पूरे विषय को लेकर पिटीशन भी हुआ था सुप्रीम कोर्ट में कि मेजॉरिटी डिसीशन होना चाहिए या केवल सीईसी अकेले ही डिसीशन दे सकते हैं। तो वो टीएन सेशन कांग्रेस से 96 में चुनाव लड़ चुके थे। एमएस गिल, जिनका एक प्रकरण मैं यहां अभी बताने वाला हूं, एमएस गिल 1996 से 2001 ये कमिश्नर भी थे, सीईसी भी थे, ये राज्यसभा मेंबर बने कांग्रेस से 2004 से 16, मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स 2009 से 11 और मिनिस्टर ऑफ एसपीआई 2011 में बने। जेएम लिंगदो जी 2001 से 2004 तक थे सीसी और वो कांग्रेस ज्वाइन किए। एन गोपालस्वामी 2006 से 2009 और उन्हें पद्म भूषण दिया गया। मैं यहां आपको आज बताना चाहता हूं नवीन चावला की कहानी। नवीन चावला जी को अखबारों में आज छपा है, हम अखबार के विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं, अखबारों में हेडलाइन आया था कि सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सोनिया गांधी जी किस पद पे थी जो उन्होंने अपॉइंट कर दिया नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के रूप में? और आप देखिए, ये 2005 की बात है, 2005 सोनिया गांधी अपॉइंटेड नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। व्हाट अथॉरिटी डिड सोनिया हैव? ये आर्टिकल छपा है 2005 का। 2009 में उस समय के तत्कालीन सीईसी एन गोपालस्वामी ने एक चिट्ठी लिखा प्रतिभा पाटिल जी को कि आप नवीन चावला जी को हटाइए इलेक्शन कमीशन के रूप में, वो इलेक्शन कमीशन थे, सीईसी नहीं थे उस समय, कि आप इनको इलेक्शन कमीशन के पोस्ट से हटाइए क्योंकि ही इज वर्किंग फॉर कांग्रेस, ये कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। और यहां तक कहा गया कि जब ये लू ब्रेक के लिए जाते हैं, व्हेन ही गोज फॉर लू ब्रेक ही इनफैक्ट गिव्स ऑल इंफॉर्मेशन टू द कांग्रेस पार्टी, सारे इंफॉर्मेशन लू ब्रेक में जाके कांग्रेस पार्टी को देते हैं, इसलिए इनको हटा देना चाहिए। ये प्रतिभा पाटिल जी, तत्कालीन राष्ट्रपति को लिखा गया गोपाल स्वामी जी द्वारा, सीसी द्वारा। सुनने के बजाय कांग्रेस ने उन्हें सीईसी बना दिया, मतलब हटाना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें सीईसी बनाया। और 2009 के लोकसभा के इलेक्शन का दायित्व कांग्रेस पार्टी ने चावला जी के ऊपर, नवीन चावला जी के ऊपर छोड़ा और 2009 में कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। उस समय भी राहुल गांधी पार्लियामेंट में थे, उस समय तो एक दिन उन्होंने टी शर्ट पहन के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, आज आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। गोपाल स्वामी जी ने प्रतिभा पाटिल के साथ साथ 16 जनवरी 2009 में चिट्ठी मनमोहन सिंह जी को भी लिखा कि आप इसी नवीन चावला जी को हटाइए बिकॉज ऑफ हिज बायसनेस टुवर्ड्स कांग्रेस। फिर भी मानी नहीं गई बात। नवीन चावला जी के ऊपर एमपी लैट फंड और लैंड अलॉटमेंट का केस हुआ, उसके बाद भी उन्हें हटाया नहीं गया सीईसी के पद से। कांग्रेस रूल के समय मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं यहां पर, वीएस संपत का केस। 2012 में जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए उनका नाम वीएस संपत था। एलके आडवाणी जी ने बहुत सख्त रूप से इस पे आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कहीं ना कहीं अन्याय है, एक कोलिजियम बनना चाहिए जिसके माध्यम से सीईसी का चयन हो, मगर इस विषय को माना नहीं गया। और आज आप देखते हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आया है, बड़ा बेंच उस पर निर्णय लेगा, मगर आज आपने देखा है पहली बार जब से भारत स्वतंत्र हुआ था तब से लेकर 2023 तक, जहां इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर का अपॉइंटमेंट डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर केवल अपने विम्स एंड फैंसीज पे करते थे, आज एक कमिटी बनाई गई है जिसमें एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी शामिल हैं ताकि उनकी राय भी ली जा सके एज फार एज अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द कमिश्नर्स आर कंसर्न्ड। न्यूज़पेपर्स पे डिस्कस कर रहे हैं तो एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल छपा हुआ है जिसमें सोनिया गांधी जी के डिसक्वालिफिकेशन का केस जो 2009 में था, उसमें दो इलेक्शन कमिश्नर्स ने डिसेंट लेटर दिया था। द ईसी पोस्टिंग इज द बेस्ट पोस्ट रिटायरमेंट ऑप्शन फॉर आईएएस ऑफिसर्स इन जनरल, इट अलाउज देम एज मैक्सिमम 6 years ऑफ जॉब। ये आर्टिकल में छपा है। ईसी सोर्सेज, सोनिया स्ट्रेटजीज टू एंश्योर चावला हेड्स द पैनल ड्यूरिंग May 2009 जनरल इलेक्शन, ही विल कंप्लीट 65 years ऑन June 30 दैट ईयर। सोनिया गांधी अपॉइंट्स नवीन चावला एज इलेक्शन कमिश्नर। ये आर्टिकल एक बहुत प्रतिष्ठित मीडिया हाउस का है और सोनिया गांधी जी को डिस्क्वालिफाई नहीं करना है, ये दो इलेक्शन कमीशन्स ने इसमें मत बनाया था कि डिस्क्वालिफाई नहीं करना है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मत बनाया था कि इस पे जांच होनी चाहिए। आप सोचिए वहां भी डिसेंट हुआ था, मगर उस बात को छिपाने की किस प्रकार कोशिश की गई थी और नवीन चावला को आगे इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। उस समय एक बड़े अखबार हिंदुस्तान टाइम्स का ही यहां पे जिक्र है, मैनी इन कांग्रेस वांट नवीन एस सीईसी टू प्रीएम्प्ट बीजेपी ट्रायड। आप देखिए खुद अखबारों ने छापा है। इस प्रकार अनेक आर्टिकल बीजेपी को हराने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट किस प्रकार हो सकता है, जो मैंने आपको कहा था चावलाज लू ब्रेक्स लीड टू कांग्रेस फोन कॉल्स सीईसी, ये सारे अखबार की कटिंग्स और बहुत सारे कटिंग्स मेरे पास हैं, मैं उन सब में नहीं जा रहा हूं। कुल मिलाकर के आप तय करिए कि अगर तीन अफसरों के बीच में पत्राचार होता है, तीन अफसर पत्राचार में अपने अपने मन की बात के वो अपने अपने विषयों को साझा करते हैं और अंततोगत्वा कंसेंसस के साथ रिजल्ट पर पहुंचते हैं, तो ये डेमोक्रेसी है या एक ही भाषा में पत्र लिखना और उसके बाद एक ही नतीजे पर पहुंचना, ये डेमोक्रेसी है। मुझे लगता है वी कैन हैव नो बेटर टाइम फॉर डेमोक्रेसी देन द प्रेजेंट टाइम इन विच दो यूनानिमिटी इज देयर इन SIR बट स्टिल वी हैड डिस्कशंस एंड डिबेट इन वन ऑफ द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ऑफ इंडिया दैट इज द इलेक्शन कमीशन। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा एज फार एज SIR इज कंसर्न, बिकॉज ये सारी चीजों के मध्य में SIR है, द सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड वन मेजर फाइनल जजमेंट डायरेक्टली अपहोल्डिंग द लीगैलिटी ऑफ SIR ऑन 27 मई 2026 में इन सभी विषयों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट बड़े स्पष्ट रूप से SIR को अपहोल्ड करते हुए दिया है। अगर विश्वास सुप्रीम कोर्ट पर भी नहीं है, विश्वास इलेक्शन कमीशन पर भी नहीं है, विश्वास ईवीएम मशीन पर भी नहीं है, अंततोगत्वा जनता पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा। जनता ही वोट देती है, जनता ही हराती या जिताती है, इसलिए आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम जनता की दरबार में छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
1: पूछे पूछे पीयू जी।
0: ये तो चाहते ही हैं, ये सारे जो विपक्षी दल चाहते हैं कि ये घर में बैठे रहें और इनको लाके हम गद्दी दे दें या उस पर बैठ जाएं, इनको लाकर हम सत्ता दे दें और वो उस पर बैठ जाए। कोई मेहनत थोड़ी करना चाहता है। ये राहुल गांधी जी हर 10 दिन में विदेश के टूर पे जाएंगे और टूर पे आने के बाद कहीं हरियाणा की गद्दी रखी जाएगी वो उस पर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे 25 दिन के लिए स्विट्जरलैंड, वहां से लौट के आएंगे तो महाराष्ट्र की गद्दी रहेगी वो उस पर बैठ जाएंगे, फिर चले जाएंगे 30 दिन के लिए घूमने के लिए होनोलुलु, वहां से लौट के आएंगे तो हम हरियाणा की गद्दी बंगाल की गद्दी रहेंगे वो उस पर बैठ जाएंगे, ऐसे होता है क्या? अरे धूप में जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, उनके तप का अर्थ अलग होता है, वो धूप में तपना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है तब जाके सीट मिलती है, उन्हें बोले तपस्या करेंगे, इस प्रकार के एलिगेशन से काम नहीं होता है।
1: पूछे रवि जी पूछे।
0: देखिए देशद्रोह कौन कर रहा है ये पूरी देश देख रही है। देशद्रोह क्या होता है? देशद्रोह होता है जब आप विदेशी भूमि में जाकर के अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट, अपने देश के इलेक्शन कमीशन, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने देश की सारी संस्थाओं को आप छोटा करके दिखाते हैं और आप वेस्ट मतलब पाश्चात्य देश में जाकर कहते हैं कि यू शुड इंटरवीन टू करेक्ट द डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया, अमेरिका शुड इंटरवीन इन इंडिया, द यूरोपियन कंट्री शुड इंटरवीन इन इंडिया टू सी टू इट दैट इंडियाज डेमोक्रेसी इज रिस्टोर्ड। क्यों? राहुल गांधी कौन है जाके वेस्ट में कहने वाले कि अमेरिका और यूरोप के राष्ट्र हमारे देश के लोकतंत्र में घुसपैठ करे ताकि देश में लोकतंत्र बहाल हो जाए? इससे बड़ा ट्रीजन क्या हो सकता है? अ ट्रेटर हैज नो बिजनेस ऑफ कॉलिंग एनी वन एल्स ट्रेटर। आस्क हिम, ही नोज व्हाट आर द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ट्रेटर्स. एक देशद्रोही के सबसे अच्छे गुण क्या होते हैं वो राहुल से बेहतर कोई नहीं जानते.
1: प्रशांत जी, प्रशांत जी का ले लेते हैं, फिर कुमार जी का, फिर मोहित.
0: देखिए, पहली बात तो है, मैं आपको ठीक करना चाहूंगा, कोई ये सुबह से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है ऐसा नहीं है. ये सुबह बहुत पहले से हुई हुई है. 2014 की जब सुबह हुई है तब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं कि किस प्रकार से जनता जनार्दन के मन में अविश्वास का भाव पैदा हो. जब कांग्रेस पार्टी ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, विकास की राजनीति में हम आगे नहीं बढ़ सकते, हम नहीं जीत सकते, तो इन्होंने देखा कि लेट अस डिसक्रेडिट द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया. कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को, कौन से संवैधानिक संस्था को इन ऑपोजिशन पार्टीज ने छोड़ा है? सुप्रीम कोर्ट तक को घसीट के रोड पे खड़ा कर दिया इन लोगों ने. सुप्रीम कोर्ट के जजेस के विषय में किस किस प्रकार की टिप्पणी की, सुप्रीम कोर्ट के विषय में राम मंदिर को लेकर उनके जजमेंट के विषय में किस प्रकार की टिप्पणी की, इलेक्शन कमीशन के विषय में, ईवीएम के विषय में, ये आज से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं. कोई ज्ञानेश जी के आने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है. ये तो सारे इलेक्शन में ईवीएम के ऊपर टीकरा फोड़ते थे. ये तो एक बार, अरे एक बार गलती से इनसे हो गया. मेरे साथ डिबेट में बैठे थे कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता. ये आप लोग तो सर्वे करते हैं, एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल का नतीजा दिखाया, तो एग्जिट पोल के नतीजे में उन्होंने कहा ईवीएम हैक हुआ है. तो मैंने कहा एग्जिट पोल में तो ईवीएम होता ही नहीं है ना, एग्जिट पोल में ईवीएम कैसे हैक हो.
2: All right, the BJP there addressing a press conference over this entire controversy that has exploded regarding the Election Commission. In fact, saying that there were discussions, it has been revealed. Remember, a statement was released by the Election Commission that said that there had been differences of opinion and discussions, but that all decisions were unanimous. Now, let's take you through this entire controversy that has seen sharp reactions from the opposition as well. The Election Commission issued a statement earlier today after questions raised over its functioning and allegations of internal rifts. In the statement, the Election Commission of India said that differing views and observations are a normal part of deliberation in any institution. They are part of the decision-making process before a final decision is taken. Now, this comes after an Indian Express report that said two election commissioners, Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi, raised formal objections at least 14 times in the last 10 months over certain decisions that were taken by the Election Commission. Their objections covered changes to the Form 6, to centralization of voter data, software modules that were developed without their approval, and restrictions on the electoral registration officers. Now, this report created a massive furor among the opposition, which hit out at the Election Commission. Congress MP Rahul Gandhi questioned the Election Commission over this, saying that vote chori is a crime against people, talking of treason as well. The report triggered a sharp reaction with the Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav seeking intervention of the Supreme Court in the matter. The Trinamool Congress even saying that the election chief election commissioner Gyanesh Kumar should be removed.
3: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए. टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो.
4: इलेक्शन कमिश्नर्स देमसेल्व्स हैव हाइलाइटेड सम ऑफ द इश्यूज टू ज्ञानेश कुमार जी. सो आई थिंक दिस इज एन एक्सट्रीमली सीरियस इशू फॉर आवर डेमोक्रेसी, बिकॉज इफ देयर आर नो इलेक्शंस then where is democracy? And if the elections are unfair and they are being rigged in any manner and the election commission is assisting in that, and if the election commissioner himself is not only aware of it but he is allowing it to happen, then it is a very very serious assault on democracy.
5: 10 mahine mein election commissioner aur election ki jiski sabse badi manyata hai, हम और आप सोचते हैं कि वो निष्पक्ष है, निष्पक्ष इंस्टीट्यूशन से ही उम्मीद करते हैं कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करेंगे, डेमोक्रेसी को और मजबूत करेंगे। लेकिन जब वहीं पर इस तरह का व्यवहार हो रहा हो कि 14 बार 10 महीने में कई उसके जो अधिकारी थे उन्होंने अपना नोट लिखा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन किसके बिहाफ पे इस तरह का व्यवहार कर रहे थे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए घातक है।
6: বাংলায় 30 লক্ষ লোককে ভোট দিতে দেওয়া হয়। আজকে সুপ্রিম কোর্টের যে বেঞ্চ ছিল সেখানেও আপনারা দেখেছেন যে বিচারপতিদের ওপিনিয়ন ডিভাইডেড, লার্জার বেঞ্চ কনস্টিটিউট করার জন্য বলা হয়েছে। জ্ঞানেশ কুমার বিরুদ্ধে এলওসি ইস্যু করা উচিত। অনেকের চিন্তা ছিল আমি বাইরে যাব ফিরবো কি না, আমি ফিরে এলাম, আমি কলকাতায়। জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এলওসি ইস্যু করে যাতে দেশ থেকে পালাতে না পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত।
7: শোনা করতে থেকে मोदी जी और अमित शाह वोटों की चोरी करके एक के बाद एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। ये लोग चुनावों की चोरी कर रहे हैं, वोटों की चोरी कर रहे हैं और बहुत बड़ा वोटों का घोटाला करके ये चुनाव जीतते जा रहे हैं। और इन वोटों की चोरी में इनके जो सरगना है मोदी जी के और अमित शाह के, वो है ज्ञानेश कुमार। और आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मांग करते हैं कि ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। और पिछले कुछ सालों में जितने चुनाव हुए हैं, दिल्ली का, महाराष्ट्र का, बिहार का, वेस्ट बंगाल का, हरियाणा का, मध्य प्रदेश का, ये सारे चुनाव कैंसिल करके दोबारा कराए।
8: आज तक तो सिर्फ हम बोल रहे थे, मतलब विपक्ष, लेकिन आज पहली बार, शायद देश के इतिहास में ऐसे पहली बार हुआ होगा कि 3 आयुक्त होते हैं इस चुनाव आयोग में, और जो 2 आयुक्त हैं विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू, इन्होंने अब कैबिनेट सेक्रेटरी के पास एक लेटर देकर कंप्लेंट दी है कि चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार की मनमानी चल रही है। तो ये बहुत ही गंभीर मामला है और प्रजातंत्र मारा जा रहा है। और जैसे मैंने कहा कि एक तो जैसे गैंग होती है ना, जो पार्टी तोड़ती है, पार्टी की चोरी करती है और प्रजातंत्र का खून करती है, हत्या करती है, तो वो उस गैंग का पर्दाफाश इन दोनों ने किया है।
9: दैट इज वेरी शॉकिंग। मुझे आश्चर्य लग रहा है। देखो, इलेक्शन कमीशन का उद्धव जी के पार्टी ने भी झेला है, हमने भी झेला है, तो मुझे आश्चर्य नहीं लग रहा है, लेकिन दुख हो रहा है कि जिस सशक्त लोकतंत्र के लिए महात्मा गांधी जी ने इतना बड़ा योगदान किया, स्वातंत्र्य की इतनी बड़ी लड़ाई इस देश ने खड़ी की, हर घर में एक आदमी तो था जो लड़ रहा था कि आप और मैं सांस ले सके। उसके बाद आई भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम सबको अधिकार दिए, हर एक को, आपको एक वोट, मुझे एक वोट, आपके कैमरामैन को एक वोट, प्रधानमंत्री जी को भी 8 वोट। ये समता की जो भाषा हुई उस संविधान ने हमें दी, और हमें कॉन्फिडेंस आया कि ये देश आगे बढ़ेगा। जरूर हमारे मतभेद हो, लेकिन क्या है कि पास होने में मजा कब है, जब मेहनत करके पास करें, कॉपी करके पास करने में क्या मजा।
10: So big, big, big, but let me tell you, 5 months ago, more than 60 Rajya Sabha members of parliament, when only 50 were needed, 60, wrote to the chairman of the Rajya Sabha, moving a motion to remove the chief election commissioner, Ganesh Kumar. That was 5 months ago. Now today, after this big news break that 2 election commissioners objected to many of the CEC's actions, it's time to bring out the Rajya Sabha motion to impeach the CEC and save democracy.
11: नहीं, देखिए, एक ऐसी स्टोरी आई है जिसके बारे में लोगों को शक था। मैं कई दफा मिला हूँ, पिटिशनर भी हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। मैंने उन दोनों की बॉडी लैंग्वेज भी देखी थी तमाम मीटिंग्स में। एक व्यक्ति ज्ञानेश जी का व्यवहार, और इसमें तमाम वो बातें आई हैं कि 10 महीने के अंदर 14 बार ऑन रिकॉर्ड ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। क्योंकि देखिए, वोटर लिस्ट सबसे सैक्रोसैंक चीज है। अगर डिस्क्रिशन यू रीड एज मन मर्जी, कम वाट में मैं ये करूंगा, और दिस पर्सन मस्ट लीव हिज ऑफिस पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन।
12: मिशन असच नाउ इन आवर कंट्री, There is only Gyanesh Kumar, the autocrat, who is controlling the entire election process at the beck and call of Mr. Modi and Mr. Amit Shah. The commission has become redundant because two members of the commission has been registering their opposition, dissent over many of the decisions, controversial decisions that has been taken by Ganesh Kumar. Last 10 months, 14 times formally they objected to many of the aspects of SIR, mass deletion, addition, Form 6, all sorts of humbug that is happening in this country in the form of SIR. My demand is that Ganesh Kumar should be removed lock, stock and barrel.
13: If it continues like this, if we do not have people like the two election commissioners, I don't want to take their name at this point of time. I don't know what trouble they are going to go. Unko ED ke chhape padenge ab, income tax ke chhape padenge, unke saath kya hoga? But if we continue like this, I mean, there will be a time when we are going to resemble a banana republic. There will be no democracy.
14: BJP government is playing a game with this SIR. So they want to remove the Muslims from this country. That is their motive. They want to make it a Hindu country, which is impossible because as per law, people have registered as voters and living here for quite a long time and they have to be allowed to live. The government cannot, by way of SIR, cannot remove their names from voters list. The funniest thing is that former Vice President, former Home Minister LK Advani, all these names they have sent letters.
2: All right, so the entire controversy over SIR and this dissent within the Election Commission growing bigger and bigger. And now Mamata Banerjee, former Chief Minister of West Bengal, has also hit out over this. In fact, she has demanded that Ganesh Kumar be arrested and she demanded a repoll in certain in West Bengal as well. This is after the report in Indian Express that claimed that two of the election commissioners did not agree with certain decisions, that there were dissent notes 14 times in the last 10 months. The BJP, however, hitting back and saying that this is a normal, healthy discussions that take place ahead of any decision that is taken. Let's just listen in to what Mamata Banerjee said.
15: This election commission must be arrested. He has no moral authority to continue. And BJP must see they cannot destruct our constitution. They cannot destruct demolition on democracy. They cannot construct only the atrocities. And they cannot depute their own ERO in the name of BJP IT team. Even counting machinery, the election machinery was being captured by the BJP IT team. What we said earlier, now it has been exposed. And that's why our All Indian Alliance, even I came to know, even Arvind Kejriwal, Rahul Gandhi and others, they also addressed the press conference. And we'll meet very soon.
2: All right, so a massive showdown over the revelations, over the news report regarding the Election Commission. Mamata Banerjee is there saying the special intensive revision of voters list was a plot to actually defeat the Trinamool Congress in West Bengal, asking that wherever Ganesh Kumar was in charge, that where polls were held, there should be repolls. Let's go across to Hrithik now for more on this story. Hrithik, take us through Mamata Banerjee's reaction. She also said that the opposition India bloc will be meeting soon.
16: Well, what we do understand that heat is only mounting over Election Commission and the Bharatiya Janata Party after this expose. As we speak, Mamata Banerjee has hit out at both Election Commission and the Bharatiya Janata Party, stating and demanding that that Ganesh Kumar should be arrested soon and the criminal process should be start against him. And she also demanded all government functionaries should be brought to the book. Mamata Banerjee also demanded, because she said that her party was the first among those party those raised concern over the irregularities over the SIR during in the runoff of Bengal election. She demanded re-election in states like Bihar or in West Bengal, where assembly election were conducted following the SIR drive and under the leadership, under the supervision of Ganesh Kumar. So what we do understand, Mamata Banerjee has also reiterated that she is going to meet the other ally of the India bloc very soon, possibly in the national capital. So what we do understand, it's a big statement is coming from the former West Bengal Chief Minister as she demand for a thorough probe and arrest of Kumar, and also that she is demanding a re-election in West Bengal. Back to you.
2: All right, Ritik. So Mamata Banerjee, the latest opposition leader to hit out at the Election Commission, in fact demanding that Ganesh Kumar be arrested. And remember, these reactions will continue. Massive showdown over the Election Commission. We'll slip into a short break. More on the other side.

0: no concrete evidence of abetment to suicide. As per sources, CCTV shows Sahil engaging in cheating. Professor Dula asking him to step out of the class as well. And these is exactly what the CCTV has shown so far, what exactly happened in the exam hall.
1: जिसको जातिवाचक स्वीकार कर रहे थे, ऊपर के जाति का है, ये करे वाला है, सब उसको टॉर्चर करके और उसका उसको उसकी आत्महत्या नहीं है, वो हुशियार तो हुशियार विद्यार्थी होता। हाँ, आप उसका ऑल इंडिया रैंक देखिए, उसके वो ये कुछ भी गलत आरोप करेंगे, वो बोलेंगे कि उधर का चीटिंग करके वो एडवांस क्रैक करके आया है, उसको अरेस्ट करिए, यही मेरी विनती।
2: मेरे बेटे को न्याय दीजिए, उस पर जो अत्याचार हुआ है उसके लिए न्याय दीजिए, और IIT का जो बैकग्राउंड है वो चेक कीजिए। दलित बच्चों को क्यों, वही क्यों सुसाइड कर रहे हैं? आपका भी काम है, आप भी नागरिक है समाज के, यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल दिस पर। आपके भी बच्चे जाते हैं, जब अच्छे प्रशासन में जाते हैं ना, वो सभी प्रशासन में ऐसा ही चलता है, लेकिन माँ बाप का काम क्या है, चलता है। हमने उसे मेंटली सपोर्ट किया, कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत अच्छा है बेटा, थोड़ा सहन कर। वो हमारी गलती हो गई, अगर हम उस दिन उसको लेके गए थे ना, मेरा बच्चा आज जिंदा होता।
3: जो भी किया, लाइक कॉपी करते हुए पकड़ा गया, फिर सुसाइड कर लिया। कॉपी करना इज़ डिफरेंट, बट सुसाइड करना इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। तो उसके लिए दुख तो है, सब बच्चों के अंदर सिंपथी है साहिल की, होनी भी चाहिए। पर फिर उसके बाद जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें डिमांड्स जो बच्चे रख रहे हैं, वो डिमांड्स भी काफ़ी हद तक सही हैं, बहुत सारी सही डिमांड्स हैं। पर फिर जो केस लगाया गया हेडुल्ला सर के ऊपर, वो कम्प्लीटली बेसलेस है मेरे हिसाब से। कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन IIT बॉम्बे में नहीं होता है, जितना मैंने जाना है अभी तक। मेरे साथ भी नहीं हुआ, मेरे किसी दोस्त के साथ भी कभी नहीं हुआ। मैं भी पहले प्रोटेस्ट में आया था, पहले दिन जब प्रोटेस्ट हो रहा था, इवेंचुअली मेरे पता लगा ये इतना सही नहीं है इनका पॉइंट। ये लाइक SC ST एक्ट जो लगा रहे हैं बिल्कुल सही नहीं है, उसका गलत यूज़ करा जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट का हमारे।
4: मेनली आपको पता है मिड सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, ही वॉज कॉट कॉपी करते हुए पकड़ा गया था, मोबाइल अंदर लेकर के चला गया था। सो जो प्रोफेसर ने कुछ बोला होगा उसके अकॉर्डिंग ही डिड सुसाइड। यहाँ पर IIT बॉम्बे किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, मतलब जो भी प्रोफेसर्स हैं, अगर आपको मार्क्स भी, अगर एग्जाम में मार्क्स दिए जाते हैं वो रिलेटिव होते हैं, जिसका जो परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंग होता है, अंदर किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है।
5: सेंसस नाउ इट वाज बीन ट्राइड टू मेक, वी ऑल अग्री ऑन वन थिंग कि चेंजेस नीड टू बी ब्रॉट टू हाउ स्टूडेंट वेलफेयर इज डन, एंड स्टूडेंट वेलनेस सेल में साइकियाट्रिस्ट और होने चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। स्टूडेंट्स वॉइस शुड बी हर्ड व्हेन डिसीजंस आर मेड, बट आई थिंक स्टूडेंट्स डिसएग्री ऑन द ट्रीटमेंट जो प्रोफेसर दुल्ला को किया जा रहा है, एंड द कास्ट एंगल व्हिच इज बीइंग ब्रॉट इन, व्हिच इज नॉट द केस एट ऑल।
0: Let's now tell you what the parents are demanding and what the faculty, the IIT Bombay faculty, has been saying so far. It's quite on contrary. So the parents say Sahil should get justice. The faculty forum says that performed duty as per IIT guidelines. That's what Professor Dula did. Parents say Sahil tortured because of his caste. And Sahil's father, while speaking to NDTV yesterday, also said that he spoke with Sahil on September 13th, and he said that there were some caste slurs passed on to him. But the faculty forum says that the allegations without credible evidence, because there's been no record by Sahil in the STSC cell of IIT Bombay as well. Parents again say want immediate arrest of Professor Dula. That's why they're sitting down on a hunger strike. Faculty forum says students not justifying academic misconduct. Parents are now also saying that IIT director and Professor Dula, all of them tortured Sahil because of caste. Faculty forum says not presuming Professor Dula's guilt, and so far there has been no evidence found against all these allegations made by Sahil's parents. Parents again say IIT conduct with Dalit kids should be probed. Faculty forum, loss of Sahil should not become a political platform at this point of time, and there cannot be any caste angle that can come to the surface. And well, yesterday Sahil's father spoke with NDTV, and he is demanding the arrest of Professor Dula. This is exactly what he said. Take a look.
6: हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद रविंद्र जी. सबसे पहले आपकी क्या मांग है, आपकी सबसे पहली क्या मांग है? अभी
7: मेरा बेटा IIT OIM में सेकंड ईयर में एनर्जी इंजीनियर करके पढ़ाई कर रहा था,

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
1: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
0: अरे मेरे राजा।
2: No matter what your day throws at you, stay in the spa state of mind with the Kohler Spa at home.
3: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy.

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आर प्योर मसाला।

0: बात भी आप हंस रहे थे, टेम्परमेंटली क्या आप जोन में थे, थोड़ा सा बताइए।
1: हाँ, इस बार मुझे पूरा कॉन्फिडेंस भी थे और सर भी हर टाइम बोलते रहते हैं कि रिलैक्स रखो, जो सर ने बताया है कि टेक्निक जो भी है उसको बस स्टेज के ऊपर अप्लाई करना है, वो चीज़ मैंने बहुत कोशिश किया भी है। तो इस बार मैं बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल भी थे और कॉन्फिडेंस था पूरा, तो बस सो जो सर ने मुझे बताया था वो पूरा मुझे करने के लिए मैं हर टाइम किया था, जो भी सर ने क्या समझाया मुझे क्या करना है मुझे, तो वही मुझे अच्छा भी लगा और मैंने किया भी है।
0: सर लास्ट दो सवाल आपका, एक मेरे का एक। आपने बोला था कि दिल्ली से निकलने के पहले मोदी नगर में आप लोगों ने न्यूट्रिशनिस्ट बुला लिया था, आपने बोला था कि ऑलरेडी आप सोचने लगे हो, मैंने उस दिन भी आपसे ताज्जुब बन गया था सुनकर, आपको बोला था क्या बोल रहे हैं आप थोड़ा सा बताइए ये क्या है, बिकॉज ये बाकी हजार एथलीट को इंस्पायर करेगी, ये आप थोड़ा सा इनके बारे में, ये डिसिप्लिन जो है इसके बारे में बताइए।
2: नहीं, वो जो जिस दिन मेरे आपकी बात हुई थी, वो जो मीरा की न्यूट्रिशनिस्ट है तेजेंद्र, उसका रेगुलर विजिट था, लेकिन मेरी उसकी इस कंपटीशन को लेके पहले बात हुई कि हमें 49 करना है, और आजकल जो है ना बॉडी वेट कट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, 48 करने में वहाँ बहुत दिक्कत आई थी, तो मुझे पता था 49 करने में भी दिक्कत आएगी, बट 48 और 49 में फ़र्क था, तो इसलिए पहले तो वो डिस्कशन किया, साथ साथ मैंने उसको डिस्कस किया कि हमें आते ही जो है कंपटीशन जोन में जाना है, वापस से क्वालिफाइंग राउंड शुरू है, तो हमें डाइट किस तरीके से करनी है जिससे हम 53 में सिर्फ मसल मास लेकर आए, फैट ना आए, तो वो उसके साथ उसी दिन हमने प्लानिंग कर ली थी जो मीरा की न्यूट्रिशनिस्ट है, और उसने प्लान बनाने के लिए बोल भी दिया कि जब आप कंपटीशन से आओगे तो प्लान रेडी मिलेगा और हम जाते ही फोकस शुरू कर देंगे, जिससे हम, क्योंकि ये इतनी जल्दी होने वाला नहीं है, जो हमारे कंपटीटर हैं अभी 53 जीकेजी कंपटीशन चल ही रहा था, आप देख रहे थे, तो मैंने पहले मीरा को बता दिया था कि हमें 100 स्नैच और 125 जर्क तक पहुँचना है, तो हम कहीं दिखाई देंगे इस कैटेगरी में, और वही दिखाई दे रहा है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें, और हम तैयारी शुरू कर देंगे जाते ही। हमने जो है अपनी जो हमारे लोग हैं उनको बोल दिया है कि क्या करना है कैसे करना है, जाते ही शुरू कर देंगे।
0: मीरा एक बात बताइए, सब लोग बोलते हैं ओलंपिक गेम्स, कोई बोलते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, आप बोल रहे थे एशियन गेम्स, ये क्यों था, मैंने ये क्या मिस हो गया था, इसलिए था क्योंकि यहाँ का स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट ओलंपिक गेम्स जैसे ही था, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए, फिर मैं आपका ये नेल पे बारे में आपको पूछूंगा और आपका ईयर रिंग, ये मेरा आखिरी सवाल होगा।
1: एशियन गेम्स काफ़ी सालों से मैं सर का भी सपना है, मेरा भी सपना है, और जब से मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू किया था तब से भी मेरा एक सपना था कि एशियन गेम्स में मेडल लेना है, पर उसी टाइम मुझे पता नहीं था कि एशियन गेम्स क्या होते हैं, पर ऐसे धीरे धीरे पता चला कि एशियन में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहते हैं हमारी वेट लिफ्टिंग में, तो वो चीज़ मुझे समझ में आते, हाँ इसलिए बोला है कि एशियन में जाके पार्टिसिपेट करके मेडल लेना है, तो हम बहुत कोशिश किया हर साल में हर एशियन गेम्स में, पर कुछ ना कुछ हमारे साथ हुआ, इंजरी हुआ स्टेज के ऊपर और सब, पर इस बार हमारे पास बहुत ज़्यादा मौका था कि हम सर दोनों भी सोचे थे कि हमारी एशियन गेम्स का मेडल नहीं है, और कितना सालों के बाद भी कोई नहीं दे पा रहा था, तो वो हमको देना था कि एशियन गेम्स में हमारी मेडल रही है उसको कंप्लीट करना है, वही चाहते थे कि मेरे पास सब कुछ है, वर्ल्ड चैंपियन है, सब मेडल है ओलंपिक का, तो एशियन गेम्स का मेडल नहीं था, तो वो चाहते थे मुझे कि मैं कर सकती हूँ, वो भी मुझे दिखाना है कि बस वही था।
0: मैं शोभिष्ठा से रिक्वेस्ट करूंगा सामने आने के लिए, ये कल आपने कितना समय से बनाया मीरा?
1: एक्चुअली ये मैं इंडिया से ही करके आया था।
0: ओ, तो आपने दिखाया? उस दिन मैंने पूछा आपने दिखाया नहीं,
1: आज ही दिखाने थे मुझे, तो यही था। मैं
0: हर टाइम कैन यू कम इन फ्रंट,
1: हर गेम्स में या चैंपियनशिप में कुछ ना कुछ करना मुझे पसंद है, तो इस बार भी मैं ये करके आया और हेयर बैंड मैंने इंडिया का फ्लैग डाला था,
0: so
1: तो
0: इसमें
1: मोटिवेशन मिलता है कि खुश हो जाता है।
3: हेलो एंड वेलकम टू एप्पल पार्क, आई एम सो थ्रिल्ड टू बी हियर टुडे, एवरी डे पीपल अराउंड द वर्ल्ड rely on our product.
4: Siri AI can find what you need and get more done than ever. And it already works seamlessly with over 300,000 apps.
5: NDTV's big splash at Apple event. NDTV at Apple's biggest upgrade. NDTV app in Apple Global Showcase. NDTV makes it to the world.

0: Well, the Election Commission of India is facing fresh questions over its functioning after the Indian Express reported two election commissioners raising objections on several decisions in the last 10 months, and these are linked to electoral rolls and the SIR exercise. Now, the ECI has rejected these suggestions of a breakdown within the commission, saying that all of its decisions, including the SIR, were completely unanimous in nature and that differing views during internal deliberations are just part of a normal process. But this controversy comes at a time when questions about the independence and credibility of the poll panel are already being debated. Now, the Congress and the BJP are also sparring over this, with the Congress party asking for the impeachment of Ganesh Kumar, the chief election commissioner, and the BJP saying that it's the Congress party raising these allegations only because it has failed to win elections in recent times. Let's take a look at some reactions.
1: मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूँ, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है, ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो।
2: ये भयानक नहीं लगता आपको? आपने पीढ़ी दर पीढ़ी, आपने नहीं, माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने, जो समझते हैं कि संविधान भी वो है, चुनाव आयोग भी वो एकल है, देश भी वो है, और वो सिर्फ एक व्यक्ति की बाहर से सुनते हैं, एक दो की भी नहीं। इस देश की हमने इस हालत पे ले आए, इस कगार पे ले आए हैं इसको।
3: आई वुड से दैट टुडे ऑल द ऑपोजिशन पार्टीज हैव फॉलन इनटू द ट्रैप वेयर दे सेड दैट द इलेक्शन कमिश्नर एंड दिस गवर्नमेंट वॉज अ डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, रादर आई वुड से दैट दिस इज प्योर डेमोक्रेसी।